मित खरस लेबरे ने दों यु न मछो ता खबा लेबरे शे ना छाव छु तू खाशी केरे